0: हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2
1: License number 10394.
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैं पता तेरी जिंदगी खुशहाल है, ते खुशहाल ही सोनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस ना हो जाओ शिकार, तो कौन पड़ेगा तो आड़े कार दी मॉर्गेज, कितों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस,

0: हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇਨਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ? ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ

जी प्रोग्राम सरब रेडियो 905-673-3337 स्टूडियो का नंबर है 9056733337 ते नाल दी नाल लाइनां चेक हो जाणगियां ते नाल दी नाल आपां अगली कॉल दे वल वी वधदे आ जी सत श्री अकाल वेलकम हैलो हैलो जी नहीं जी तुहाडी आवाज नहीं पहुंच सकी साढ़े तक 905-673-3337 जी बिल्कुल सारांश जी दी कॉल आ रही सी सानू पर किसी कारण करके ऑन एयर साड़ी आवाज नहीं जा सकी ते जरूर तुसी दोबारा कॉल करो सारांश जी ते दसी आपां सारे नूं जानकारी दईए यूनी ग्लोबल एडवाइजरी की है की काम करदी है ते तुहाडे लई किद्दां एक बेहतर चीज साबित हो सकती है तुहाडे कैरियर नूं लैके स्टडी नूं लैके ते 905-673-3337 905-673-3337

0: क्या बात है, बिल्कुल जी। ते चलते हैं अपा एक कॉल दे वाल। जी सत श्री अकाल।
1: अकाल वीर जी, की हाल है?
0: बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल है।
1: बस ठीक है जी। बस मैं थोड़ा रेडियो सुनता ही, गड्डी चलाउंदा ही, ड्राइव करता जी।
0: वेरी नाइस जी, क्या बात है, आवाज पूरी सही आ रही है जी।
1: बिल्कुल सही है जी वीर जी।
0: क्या बात है मेरे जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दसन दे लिए। ते प्रोग्राम एंजॉय करो, ते अपा टॉपिक ते भी गल करते हैं। थैंक यू मेरे,
1: थैंक यू वीर जी।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, क्या बात है। ते चलते हैं जी अपा नेक्स्ट कॉल दे वाल। लाइनां साड़ियां हुण सही ने, ते खोल भी दित्तियां अपा लाइनां सारियां। ते साडे नाल जुड़ चुके ने यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो सारांश जी। पहला ते वेलकम करिए सारांश जी, वेलकम।
2: थैंक यू जी, बहुत बहुत जी, एंड सभी को सत श्री अकाल हमारी तरफ से। जी
0: क्या बात है सारांश जी, गलबात कर रहे सी अपा, सारांश जी आणगे दसणगे भी की कुछ कर रहे हैं। वैसे जदों लास्ट टाइम अपा ऑफिस दे विच विजिट किया, ते मैं देख के हैरान सी किन्ने इंटरेस्टेड परसन ने। हर एक नूं इह भी साडा करियर चेंज होवे, असीं स्टडी करके एक वधिया होर बैटर करियर कर सकीए, ते उहदे लई तुसीं जिहड़ी हैल्प कर रहे हो। मैं ऑफिस दे विच देख के भी हैरान सी किवें इंटरेस्ट सारिआं दा आ रिहा है, पर जिन्हां नूं हजे तक भी कई बार नॉलेज नहीं पहुंच पाती, इनफॉरमेशन नहीं पहुंच पाती, उन्हां दे लई की मैसेज है? यूनी ग्लोबल एडवाइजरी की कर रही है, ते जिन्हां ने करियर चेंज करना है उन्हां लई किदां बैटर साबित हो सकदी है जी सारां जी?
2: हाँ जी, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी 7 ईयर्स हम बिजनेस में है, एंड देन बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प कर चुके हैं और स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। अब स्किल अप हमारे पास आपके लिए करियर फोकस प्रोग्राम सच एज HVAC, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग है। ऑन अदर हैंड हमारे पास सौखे जो प्रोग्राम भी ने अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि फुली ऑनलाइन है। ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं फुली ऑनलाइन प्रोग्राम, जो वो घर के कम्फर्ट से अटेंड करते हैं 2 to 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे सिर्फ, दैट्स इट। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो आप कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी वाले हैं, और सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट फंडेड हैं। कुछ टीचर लेड क्लासेस हैं, कुछ टीचर के बिना वाली क्लासेस हैं, सेल्फ स्टडी जैसे मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा ईजी है। सो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट उनकी फीस पे करती है, अब गवर्नमेंट जी उसी कॉलेज उसी प्रोग्राम की फीस पे करेगी जो एक पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं। ऑन अदर हैंड बाकी साथ ही साथ आपको आपके खाते में, मेरे में नहीं, आपके खाते में 30 से लेके $100,000 की फंडिंग गवर्नमेंट करती है डायरेक्ट। क्यों करती है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर पाए उस टाइम पे, बच्चों को खाना दे पाए, ग्रोसरी कर पाए, आप उस पैसे को कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं। उस पैसे के 2 पार्ट है फंडिंग के, एक है ग्रांट जो वापस नहीं करना, एक है ऑप्शनल लोन जो कि 1 साल तक 0% पे है, और इसमें नो क्रेडिट चेक, नो एज लिमिट। आपकी एज 30, 40, 75 जितनी भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती एज पे। बड़े क्लाइंट्स हमारे पेंशन पे वो भी कर रहे हैं, और कोई क्रेडिट चेक इसके अंदर नहीं होता। अब आती है हाथी चीटी की बात, पैसे आपके मन रहे हाथी जैसे, लेकिन हमें देनी हमें चीटी। फीस कितनी हमारी? 199 से 499, काम होने के बाद देने, शुरू में भी देनी है आपने। आपके खाते में पैसे कितने विद इन 30 to 90 days, तब आपने हमारी फीस देनी है। हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है, चाहे हमारा नुकसान हो जाए बाद में फीस ना दे, हमारा नुकसान हो जाए आपका ना हो। क्योंकि ग्रांट फंडिंग सुन के लोग वैसे ही डर जाते हैं, बट हम वो काम करते ही नहीं जी। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? नोटिस ऑफ असेसमेंट, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर फैमिली ऑफ 4 है अप टू 80,000 की फंडिंग मिल जाती है उनको। और इसमें से आधा पैसा क्या है? ग्रांट्स जो वापस नहीं करना, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ग्रांट्स जो वापस नहीं करना, टैक्स फ्री होता है ये। और
0: जी सारा जी, एक चीज हो रहा है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼।
2: ਹਾਂਜੀ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ, ਆਪ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰਲੂ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਜੀਟੀ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਮੀਨਸ ਆਪਕਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਜੋ ਹਮ ਜਿਸਕਾ ਆਨਸਰ ਹਮ ਏਅਰ ਪੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਫ ਏਅਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਂਗੇ, अगर आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे $70,000 से कम है तो ही आप हमें कॉल करें, तो ही आपको बेनिफिट है। अगर आप सिंगल है, आपकी सिर्फ फीस कवर होगी, लोन कॉलेज की फीस कवर होगी, लोन ही आएगा सिर्फ, आपको बेनिफिट नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, अप टू 45,000 फंडिंग मिलती है आपको। अगर आप मैरिड विद 3 kids हैं, आपको अप टू 100,000 की फंडिंग मिलती है, जिसके अंदर से हाफ पैसा क्या है? ग्रांट, और बाकी नो क्रेडिट चेक, और फीस हमारी बाद में देने को हमने, इट्स वेरी सिंपल थिंग। सोखे जे कोर्सेज में हमारे कितने ही हाउस वाइफ है, उबर ड्राइवर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ट्रक ड्राइवर है, जो घर से स्किल डेवलप कर रहे हैं, अकाउंटिंग का कोर्स करके बहुत लोगों ने बिजनेस भी स्टार्ट करा है। तो आप हमें कॉल करें, हमारा ऑफिस 200 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरिंटा रिडेरी पे है, मंडे भी आप आ सकते हो, ऑफिस ओपन है हमारा, और असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है, सोखे के कोर्सेज ने, बाकी बातें करेंगे हमारे ऑफिस में, आप एक विजिट करें और आपको अच्छा बेनिफिट होगा, अभी ही आए, क्यों, क्योंकि 1 अगस्त से रूल चेंज हो रहे हैं, लोन आ रहा है, ग्रांट गवर्नमेंट कट्स कर रही है, ग्रांट पे जो गवर्नमेंट यूक्रेन को इतने फॉरेन एड में इतने बिलियन डॉलर दे रही है, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है एजुकेशन में, आप अभी आए और अपने लाइक फंडिंग हासिल करें, स्किल हासिल करें। नंबर हमारा क्या है, नंबर है 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 डॉक्यूमेंट्स भी सिंपल से लगते हैं, कोई इसमें गवर्नमेंट के पास पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वोटर असेसमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई इसमें सेटिंग है नहीं, अप्रोच है नहीं, वही डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट होने हैं, जहां कारीगरी नहीं है वहां कमीशन नहीं है, जहां कमीशन नहीं है वहां पे कोई कैच नहीं है, सीधा साधा सा काम है, ऑनेस्टली हम 7 ईयर्स हेल्प कर रहे हैं। नंबर अगेन 437-264-3175 437-264-3175
0: जी बिल्कुल सरना जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तुसी भी जरूर विजिट करो 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड इन मिसिसागा, जा बेटर है कॉल करके तुसी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, 437-264-3175 437-264-3175 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी सरना जी। सरना जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर,
2: थैंक यू
0: जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ते प्रोग्राम सरब रेडियो तुहाडे होस्ट सरबजीत सिंह दे नाल।

की सरणी उभरे कागज सगल संवारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सतगुरु पूरे अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु गाखिया वड्डी वड्याई नानक करते की सूरत महला पंजवा भय कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठान पाई संसार अपने जी जत आपे राखे जमहे कियो हटदार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरिए काटन हार।

ध्याय पाई मन तन शीतल हो। सूरत अल्लाह पंजवा संत हो हर हर नाम ध्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहा सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म।

सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा जी अजंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाय अपने से बकिया पे रात पूरर पई। पार ब्रह्म पूरा मेरा नाल गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहा

0: स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5990 पर कॉल कीजिए। 9054567733 Alpha Optical, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जैसे मेरे गुर सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता निर्गुण सत स्वामी पूरन पुरख विधाता रहा अंग

घ्राणं पातु सदा पानु मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्र कंठं पातु विभावसुः स्कंधौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे मे पातु मार्तांडो गुल्फौ पातु त्रिशाम्पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रो किलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्र सन्निभम् सर्वरोग भयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

0: पंचमुखी कवच सभी प्रकार के इसके नियमित पाठ सभी प्रकार के रोग और कष्ट पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी और आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के
1: श्री अंगारकवच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद अंगारको देवता अं बीजं गं शक्ति रं कीलकं मम अंगारक

चंडिका दक्षिणी पत्रकाली चेरियां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुव्यां सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु नैशान्यां शिव प्रिया जलस्थले चांतरिक्षे पातु मां जगदंबिका कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै लदातव्यं वक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमप्यर्च विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां प्रतिव्यास प्रदक्षिणे यत् परं लभते लोकस्तदेतत्तारणे मुने पञ्चलक्षजपेनैव चित्तमेतत् भवेत् ध्रुवं लोके च सिद्धकवचो।

0: हम सभी श्रोताओं का घर से साहब में बहुत ही प्यार सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय मदद। और विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की सोमवार की सभी शहरों में बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग की गई है, बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, आप जरूर जाइएगा, बच्चों को साथ ले जाइएगा, अपने फैमिली के साथ, बहुत सारे लोग घूमने कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, विच इज जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आइए, इसी के साथ आपका पहला लॉन्ग वीकेंड है समर का, इस साल का 2026। तो आइए, अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर का आपको बारबेक्यू चाहिए, जहाँ फिर बढ़िया बढ़िया अपने आउटडोर का सोफा भी चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयर पर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है, और उनकी मंथली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, 905-799-0045 पे आप उन्हें कीजिएगा। और फिर आपने अभी शादियां होने वाली हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी मौका है, आप सोने के गहने लेना चाहते हो, सोने की बार्स लेना चाहते हो, डायमंड अप टू 70% ऑफ आपको चाहिए, तो आप जाइएगा अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है मोटर में। तो और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए उनको कॉल कर सकते हो, 905-673-0100-905-673-0100। और अभी आपने घर खरीदा है, आपको मूव तो होना है, मूविंग के लिए आपका कनाडा भर में मदद करते हैं और बहुत हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं एच के मूवर्स, आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना मूविंग के लिए ट्रक बुक कर सकते हो, तो 416-524-4 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो एच के मूवर्स, और आपका कोई भी बड़े बड़े सामान को भी, आपके कारें और जो भी आपका सामान होगा, बहुत आपके लिए हिफाजत से उनकी पूरी टीमें अलग अलग हैं, तो वो आपके सामान को बड़े अच्छे तरीके से मूव करते हैं, तो एच के मूवर्स 416-524-6704 एच के मूवर्स।
1: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए, अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत, ठीक है जी। तो मिस पूजा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं आपके लिए, तो आज उन्हीं का गीत आपको सुनाते हैं, और उम्मीद रखूंगी आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है और ट्रक रिपेयर के लिए आपको जाना होगा बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, 715 रोड मिसी सागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 905-625-0055 पे आप कॉल कर सकते हो ट्रक रिपेयर के लिए, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर को। और अब आपके लिए बहुत सारे

जी हाँ, तो एक मिनट से आप जी हाँ, तो पंजाबी का गाना एक के बाद दूसरा लग गया, तो आपके लिए बढ़िया सा गाना सुनाना चाहती हूँ, सोनी पावला का है ना, तो आपको जरूर सुनाती हूँ। बस अभी आपका, अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे। आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हैं, अपने किचन वाटरलू गोल्फ में कोई भी किसी किस्म का भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिएगा, नसीब ठंड आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको सेवाएं देंगे। तो अब अगर आपने कहीं पे भी किसी तरह का भी आपको आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर खरीदना है, और अभी समर आ गई है, तो आपने बढ़िया बढ़िया अपने घर के लिए सोफा फर्नीचर लेने हैं, या फिर आपने अपने घर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी लेना है, गिफ्ट लेके देना है किसी को, किचन की गैजेट्स आपको चाहिए बढ़िया लेटेस्ट, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड घर का फर्नीचर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए, 9057-99-0045 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने मूव होना है, एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, तो आप और जानकारी के लिए अपने ट्रक बुक करने के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704। अब आपको सुनाते हैं सोनी पावला का ये गाना।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा गीत गुरदास मान जी का। जी हाँ, गीत आपको सुनाएंगे आज, बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो आपका कुछ लोग अभी कहीं जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे, तो काम से आ रहे होंगे कई लोग, तो शिफ्टें करते हैं, तो आप इंजॉय कीजिएगा सॉन्ग गुरदास मान जी का। गुरदास मान जी के तो जितने भी गाने हैं सब ही कमाल के हैं। कोई भी गीत आपके लिए सुना, आपको सुना दिया जाए। मेरी कोशिश है, उनका पहला जो गाना था छल्ला, वो बड़ा पहले उस उन दिनों में बड़ा सभी को अच्छा लगता था। वो टीवी पे भी आते थे तो सभी उनसे वही गाना सुनना चाहते थे, छल्ला। तो आइए आपको वही गीत गुरदास मान जी का सुनाएंगे। तो अगर आपने किसी को भी खाना आपने लेना है या फिर ऑर्डर करना है, न्यूली रेनोवेटेड है, न्यू इंडिया स्वीट्स का रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है, तो वहाँ पे आपके लिए उनका खाना बहुत ही बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है। आपको कोई भी खाना किसी किस्म का भी ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया आपकी वहाँ पे खाना बढ़िया आपको बना के देंगे। तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट को कॉल कीजिएगा 905-814-1730, 905-814-1730। तो आपके लिए अभी मैं देख रही हूँ कि चलो ये आपको सुनाते हैं कि दुनिया में अभी उन्होंने ये एक बड़ा सवाल उठाया था कि की बनो दुनिया का, कि दुनिया में हर तरह के अजूबे हो रहे हैं अभी, तो आपके लिए कितना एडवांस हो गया है। एआई ने तो कमाल ही कर दिया है हर एक चीज में, हर एक बिजनेस में बहुत सारी तब्दीलियां एडवांसमेंट कर दी है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
2: मतलब के किराए पे लाला के हीरा, इश्क दी चादर करी जान ली, होटल दे बेले च चूरी खवा के, ते मच्छियां चराणी किधर जा रही है, ये चढ़ती जवानी किधर जा रही है,

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो उम्मीद रख रही हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेना है और बढ़िया टीवी लेना है लेटेस्ट मॉडल, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, शॉपिंग करिए वहां पे जाके अपने घर के लिए, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिए 905-799-0042, 905-799-0045। अभी तक 30 साल का आपने टैक्स नहीं भरा है, आपको HST फाइल करनी है, बिजनेस की पर्सनल जहाँ टैक्स भरना है, तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8835 पे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो के आसपास में आपने घर खरीदना बेचना है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-670-1313, 416-677-1313 पर आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए किस कौन सा गीत सुनाया जाए? सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब
0: सिलेक्शन
1: कीजिए।
0: जो जो ओल्ड इज गोल्ड सिलेक्शन है, उसी में से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ये गीत आपके लिए सुनाते हैं।
2: दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो,
0: तेरे घर के सामने
2: प्यार करे पुकार, प्यार का राग सुनो।

तो गुलाब का जवाब आपका जो पता है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुमने को दिया प्यार का राज सुनोगी, दिल का भर करे तो

खाना पर न तो गिराना आंसू के तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आंसू छू लिया प्यार का।

जी हाँ, एक और फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति पर है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और रात को आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाएंगे और इसी तरह हम हमारा जो सफर है एक घंटे का मजे से गुजरेगा। तो बहुत सारे शहरों में फायरवर्क्स होगा, तो वीकेंड में खूब एंजॉय कीजिएगा, पर प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सुबह दा भला, हैव ए वंडरफुल एंड ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

प्यार का सोन प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के।

0: की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन.
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी, 6477022023 6 2 2 3 6 7 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2: Big or small, we move it all.
3: HK Movers.
2: Local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and Moving Services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, haan bhai, ab badi highway da door pori hoi khadi hai, ki gal
7: hai? एक्सीडेंट हो गया कार दा टो ट्रक है नु फोन कर लगियां
6: ओ टो ट्रक छड मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वालों नु नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते
7: आहो मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनी ने डील कर दिया नाल ही हुन मेरी कार दा मिशन टेस्ट करा दो ने नवे टायर पवा दियो उधरो ब्यूटी पार्लर जाना उधरो कार दा पंगा आ छेदी करो स्काईडोम वाले नु फोन करो 905-874-9878
6: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम तो सोने दे सुहागे वाली गल हुंदी जे
8: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकते हो चमकौर सिंह नाल 416-602-1313 416-662-1313।

0: एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, रामटर्न.
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी, 6476702 2023 647 702 VTE.
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist, HK Movers.
4: HK Movers. Oh.
5: रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़े बड़े. अच्छ तो बया बया कराई ने का फोन आ गए, तो काफ़ी कमर्शियल भी लग गए, सो चंगी गल आ. इस तरह प्रोग्राम नूं पसंद कर रहे ने भाई सरबजीत होनी, कहिंदे जी बड़े वधिया गीत, तो एक अद्धा होर ला दिओ जांदे जांदे. सो आपां गीत कढ लिया, वह भी वधिया तुहानूं जांदे जांदे सुना देना. सो अपने लौंगी नूं वधिया इंजॉय करो. हैप्पी विक्टोरिया डे लौंगी नूं तुहानूं सारिआं नूं. इस तरह नाल ही सानू मिस्टर मिसिज गिल भी सुन रहे हैं प्रोग्राम में, हमेशा सुनते हैं ऑलवेज. सो मैसेज भी भेजा गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी. मनजीत सिंह CW हैंडरसन तो थोड़ा भी गीत आ रहा जल्दी जी. सो पर स्पॉन्सर किया जा रहा टैलीटाइम वालों. टैलीटाइम तुम चले हो किसी भी ब्रांच से, उतों लो तुम TV 50 तो लैके 85 तक 98 तक. अपलायंसिस लो, वो भी मिल जाएंगे. 6 महीने बाद पेमेंट करो, साल बाद करो. कोई हिडन फी नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फी नहीं. पहला कोई पैसा नहीं देना. कहते प्राइस जितों मर्जी लाओ, तुम खबरों सज्जो प्राइस थोड़ी मैच नहीं हुई बल्कि बीट होएगी. टैलीटाइम पिछले लंबे समय तो TeleTime.ca जाकर तुम विजिट कर लो. हेड ऑफिस फोन नंबर 905-273-5550. गिल स्वीट समोसा फैक्ट्री दी 6 ब्रांचा ने, हूँ 4 इतने ने, 2 अलबर्टा के ने. 2131 विलियम्स पार्क के मेन ब्रांच, इतने मिठाई बनती. देखो मिठाई इन्हों की बहुत दूर दूर तक जाती है. गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म जलेबियाँ, भाजी तैयार करवानी है अपने विआह शादी लई, केटरिंग करवानी है वैजी केटरिंग, वह भी कर देंगे. तो नाल ही गिल स्वीट समोसा फैक्ट्री का नंबर 905-799-2616. आने वाले समय तुम कोई पार्टी करो तो नाम है वर्दी कन्वेंशन सेंटर. बड़ी वधिया पार्टी करो इतने, 80 पीपल तक, 100 पीपल तक. बेस्ट रेट, बेस्ट सर्विसेज, बहुत ही वधिया बैंकट हॉल है. खुली डुली पार्किंग है. हुण पैटियो इन्होंने ओपन करता है. पैटियो नूं अपना बुक कराओ, बह के ठंडी ठार बीयर पीओ, अपने मनपसंद की ड्रिंक लो. समर के नंबर 416-720-2927. बेस्ट रेट, बेस्ट सर्विसेज. नंबर टू कॉल चार्ली सिंह 416-720-2927. आर्मी ट्रेडर्स का नंबर 905-671-3370. इंडिया नूं पैसे भेजने लिए, मंगवाने लिए तुसी कॉल कर सकते हो. 69 रुपये 50 पैसे तुसी किसी भी तरीके पेमेंट भेजने, $1 कनेडियन दे ते दूसरे 92 रुपये 50 पैसे 1 अमेरिकन डॉलर दे. नंबर टू कॉल गुरचरण बड़ौल 905-671-3370. 9056-713-770 तुसी कॉल कर सकते हो. सो यही साडा दोस्तों अज्ज दा प्रोग्राम. आने वाले शनिचरवार को फिर अगर सारा कुछ ठीक रहा, मेरा नंबर है 416-662-1313. हैव ए नाइस नाइस हैप्पी डे लोंग वीकेंड, गुड नाइट सारा नू, सत श्री अकाल. नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला.

अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया बड़ी बड़ियाई नानक करते की राखिया सूरत महला पंजवा भय कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया भाई ठान पई संसार अपने जिए जत आपे राखे जमहे कियो हटदार हर के चरण हृदय और धार सदा सदा प्रभ सिमरिए पाप काटन हार रहा।

आइए पाई मन तन शीतल हो। सूरत अल्लाह पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई। सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा पल पाई रहाओ। सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म

सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा जी अजंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाए अपने से बकिया पे रात पूरन पई। पार ब्रह्म पूरा मेरा नाल, गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहा

0: स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5090 पर कॉल कीजिए 9054567733। Alpha Optical, your vision is your business।
1: जन स्वामी गुण गावत नानक आलाप। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

स्वामी मेरे सरब कला बने आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की बढ़ियाई सूरत माला पंजम सुख मंगल कल्याण।

रोग सपना से कभी अपना कृपा धारी आज पहर आराधा स्वामी पूर्ण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत रात रात ले हो पाई मेरे को प्रभा के अरदास रहो जो मांगो सुई सो पाओ अपने खसम परोसा कहो नानक गुरु।

वजह से मेरे को सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता जनकान सत स्वामी पूरन पुरख विधाता रहा।

मुखं पातु सदा रविः, जिह्वां पातु जगन्नेत्रः, कण्ठं पातु विभावसुः, स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु, भुजौ पातु प्रभाकरः, करावब्जकरः पातु, हृदयं पातु भानुमान्, मध्यं पातु सुसप्ताश्वो, नाभिं पातु नभोमणिः, द्वादशात्मा कटिं पातु, सविता पातु सक्तिनी, ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो, जानुनी पातु भास्करः, जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो, गुल्फौ पातु त्रिशाम्पतिः, पादौ पातु दिनमणिः, पातु मित्रो किलं वपुः, आदित्यकवचं पुण्यम्, अभेद्य वज्रसन्निभम्, सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः,

0: पंचमुखी भगवान कवच सभी प्रकार के इसके नियमित पाठ सभी प्रकार के रोग और कष्ट पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी और आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के
1: श्री अंगारकवच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद अंगारको देवता अम बीजम कम शक्ति रम कीलकम मम अंगारक प्रसाद।

पत्रिका दक्षिणी पत्रिकाली च धैर्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुव्यां सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु।

0: आप सभी श्रोताओं का घर से साहब में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय मदद। और विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की सोमवार की सभी शहरों में बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग की गई है, बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, आप जरूर जाइएगा, बच्चों को साथ ले जाइएगा, अपने फैमिली के साथ, बहुत सारे लोग घूमने कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, विच इज जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आइए, इसी के साथ आपका पहला लॉन्ग वीकेंड है समर का, इस साल का 2026। तो आइए, अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर का आपको बारबेक्यू चाहिए, जहाँ फिर बढ़िया बढ़िया अपने आउटडोर का सोफा भी चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और उनकी मंथली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, 905-799-0045 पे आप उन्हें कीजिएगा। और फिर आपने अभी शादियां होने वाली हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी मौका है, आप सोने के गहने लेना चाहते हो, सोने की बार्स लेना चाहते हो, डायमंड अप टू 70% ऑफ आपको चाहिए, तो आप जाइएगा अलमदीना ज्वेलर। अलमदीना ज्वेलर आपके लिए एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है मॉर्टर में, तो और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए उनको कॉल कर सकते हो, 905-673-0100-905-673-0100। और अभी आपने घर खरीदा है, आपको मूव तो होना है, मूविंग के लिए आपका कनाडा भर में मदद करती हैं और बहुत हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं एचके मूवर्स, आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना मूविंग के लिए ट्रक बुक कर सकते हो, तो 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो एच के मूवर्स, और आप आपका कोई भी बड़े बड़े सामान को भी, आपके कारें और जो भी आपका सामान होगा, बहुत आपके लिए हिफाजत से उनकी पूरी टीमें अलग अलग हैं, तो वो आपके सामान को बड़े अच्छे तरीके से मूव करते हैं, तो एच के मूवर्स 416-524-6704 एच के मूवर्स।
1: माजा मालवा द्वाबा वेडिंग स्टोर,
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: माजा मालवा द्वाबा वेडिंग स्टोर।
0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत, ठीक है जी। तो मिस पूजा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं आपके लिए, तो आज उन्हीं का गीत आपको सुनाते हैं, और उम्मीद रखूंगी आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है और ट्रक रिपेयर के लिए आपको जाना होगा बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, 715 रोड मिसी सागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 905-625-0055 पे आप कॉल कर सकते हो ट्रक रिपेयर के लिए, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर। और अब आपके लिए बहुत सारे

जी हाँ, तो एक मैसेज से आप जी हाँ, तो पंजाबी का गाना एक के बाद दूसरा लग गया, तो आपके लिए बढ़िया सा गाना सुनाना चाहती हूँ, सोनी पावला का है ना, तो आपको जरूर सुनाती हूँ। बस अभी आपका अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260 पे आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हैं। अपने किचन वाटरलू गोल्फ में कोई भी किसी किस्म का भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना है, बेचना है, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिएगा। नसीब ठंड आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको सेवाएं देंगे। तो अब अगर आपने कहीं पे भी किसी तरह का भी आपको आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर खरीदना है, और अभी समर आ गई है, तो आपने बढ़िया बढ़िया अपने घर के लिए बैकयार्ड के सोफा फर्नीचर लेने हैं, या फिर आपने अपने घर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी लेना है, गिफ्ट लेके देना है किसी को, किचन की गैजेट्स आपको चाहिए बढ़िया लेटेस्ट, और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड घर का फर्नीचर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057-99-0045 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने मूव होना है, एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, तो आप और जानकारी के लिए अपने ट्रक बुक करने के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704। अब आपको सुनाते हैं सोनी पावला का ये गीत।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 अर्जुन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा गीत गुरदास मान जी का। जी हाँ, गीत आपको सुनाएंगे आज, बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो आपका कुछ लोग अभी कहीं जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे, तो काम से आ रहे होंगे कई लोग, तो शिफ्टें करते हैं, तो आप एंजॉय कीजिएगा सॉन्ग गुरदास मान जी का। गुरदास मान जी के तो जितने भी गाने हैं सब ही कमाल के हैं। कोई भी गीत आपके लिए सुना, आपको सुना दिया जाए। मेरी कोशिश है, उनका पहला जो गाना था शल्ला, वो बड़ा पहले पहले उस उन दिनों में बड़ा सभी को अच्छा लगता था। वो टीवी पे भी आते थे तो सभी उनसे वही गाना सुनना चाहते थे शल्ला। तो आइए आपको वही गीत गुरदास मान जी का सुनाएंगे। तो अगर आपने किसी किसी को भी खाना आपने लेना है या फिर ऑर्डर करना है, न्यूली रेनोवेटेड है न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे मौजूद है, तो वहाँ पे आपके लिए उनका खाना बहुत ही बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है। आपको कोई भी खाना किसी किस्म का भी ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है किसी इवेंट के लिए, किसी पार्टी के लिए, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया आपकी वहाँ पे खाना बढ़िया आपको बना के देंगे। तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट को कॉल कीजिएगा 905-814-1730। आपके लिए अभी मैं देख रही हूँ कि चलो ये आपको सुनाते हैं कि दुनिया में अभी उन्होंने ये एक बड़ा सवाल उठाया था कि की बनो दुनिया का, कि दुनिया में हर तरह के अजूबे हो रहे हैं अभी, तो आपके लिए कितना एडवांस हो गया है। एआई ने तो कमाल ही कर दिया है हर एक चीज़ में, हर एक बिजनेस में बहुत सारी तब्दीलियाँ एडवांसमेंट कर दी है।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो उम्मीद रख रही हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेना है और बढ़िया टीवी लेना है लेटेस्ट मॉडल, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, शॉपिंग करिए वहां पे जाके अपने घर के लिए, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिए 905-799-0045, 905-799-0045। अभी तक 30 साल का आपने टैक्स नहीं भरा है, आपको HST फाइल करनी है, बिजनेस की पर्सनल जहाँ टैक्स भरना है, तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135-416-302-8135 पे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो के आसपास में आपने घर खरीदना बेचना है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-670-1313-416-677-1313 पर आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए किस कौन सा गीत सुनाया जाए? सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड।
1: शिवानू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
0: जो जो ओल्ड इज गोल्ड सिलेक्शन है उसी में से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ये गीत आपके लिए सुनाते हैं।
2: दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो दे,
0: तेरे घर के सामने
2: प्यार करे पुकार,
0: प्यार का राग सुनो।

तो गुलाब का जवाब आपका जो पता है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुमने तो दिया प्यार का राज सुनोगी, कब मर करे पुकार।

स्वर्ण तुम गिराना आंसू की तरह निगाह से, प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से। आंसू छू लिया प्यार का।

जी हाँ, एक और फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति पर है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और रात को आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाएंगे और इसी तरह हम हमारा जो सफर है एक घंटे का मजे से गुजरेगा। तो बहुत सारे शहरों में फायरवर्क्स होगा, तो वीकेंड में खूब एंजॉय कीजिएगा, पर प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाद का भला, हैव ए वंडरफुल एंड ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के चांदी प्यार का सोना प्रेम

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

अहनिस सहज सपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसहां कुरसहां चट्टीऐ तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाहो जिस पास बैठियां सोहिया

0: सच कहे जे होंदा।
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी बाणी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

शुक्र करी जा जिक्र करी जा, शुक्र करी जा जिक्र करी जा, मैनू मार मुका दे फिकरां नू, उहदे भाणे उही जाने, उहदे हथ फड़ा दे फिकरां नू, उहदे हथ फड़ा दे फिकरां नू। सो सति श्री अकाल जी, आदाब, उम्मीद करदे हां कि तुसीं ठीक ठाक होवोंगे। ऐतवार दी सोहणी सजरी सवेर दे विच रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लै के हाजिर हो गए हां। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू ते रोज़ दी तरह रमेश हुशियारपुर जी सर नाल आउणगे, खबरां दे नाल सांझ पाउणगे। उम्मीद करदे हां कि तुसीं ठीक ठाक होवोंगे। प्रोग्राम नूं आपां इत्थों शुरू करदे हां जी। 6:16 हो चुके आ ते खूबसूरत सूरज दीआं किरणां स्टूडियो दे विच आ रहीआं ते चढ़दी कला दा प्रतीक। उम्मीद करदे हां कि अज दा प्रोग्राम सारे रल मिल के इंजॉय करेंगे। तुसीं गड्डियां च, बसां च, ट्रकां च, जिथों जिथों भी प्रोग्राम नूं इंजॉय कर रहे हो, तो उम्मीद करांगे कि इह पूरे 2 घंटे दा सफ़र तुहाडा साडा बहुत खूबसूरत होवेगा।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका
0: ते सेविंग्स भी।
1: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
0: ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
2: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
3: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: Mitti di khushbu, Punjab da rang, Rams Punjabi, apneyan da pyar, sachche jazbaatan da ikrar.
6: Tusi sun rahe ho Radio Rams Punjabi.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका
0: ते सेविंग्स भी।
2: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99
0: ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
3: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
2: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
4: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
5: कि तुसी देश विच नवे हो, नेशनल बैंक कैनेडा विच तुहाडे पहले कदम चक्कन विच तुहाडी मदद करन लई इत्थे है। मनी सेंस अनुसार 2025 कैनेडा विच नवे आउण वालिआं लई सब तों वधिया बैंक बारे जाणो अते नवे आउण वालिआं लई सारी बैंकिंग सेवावां दे नाल शुरुआत करो। नेशनल बैंक, कुछ बनाओ। कि तुसी देश विच नवे हो, नेशनल बैंक कैनेडा विच तुहाडे पहले कदम चक्कन विच तुहाडी मदद करन लई इत्थे है। मनी सेंस अनुसार 2025 कैनेडा विच नवे आउण वालिआं लई सब तों वधिया बैंक बारे जाणो अते नवे आउण वालिआं लई सारी बैंकिंग सेवावां दे नाल शुरुआत करो। नेशनल बैंक, कुछ बनाओ।

जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मिलनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रांच।